नमस्कार दिस ही को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को बल मोहब्बत कियो घट घट के अंदर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चिटी ते कुंजर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घट घट के बट बट की जान जा बिद करख करा कर तारा परचा तरत दब देह अपारा जाब्या करख करत हो कबहू तुम्हें मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझो चार है।

हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पणी जय अर्ध सहस फुण तीन कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रब वार तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पख्याने त्रया चरित्र मंत्री भूप संवादे चार सौ पांच चरित्र समाप्त मस्त सुभ मस्त अफजु दोहरा दास जान कर दास पर की जय कृपा अपार आप हाथ दे राख मोहे मन करम बचन विचार चौपाई मैं न गिने सह प्रथम नाऊ किसन बिसन कबहू नह त्याऊ कान सुने पहचान न तिन सो लिव लागी मोरी पग इन सो महाकाल लखवार हमारो महालोह मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाहें गहें की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिया चुन चुन सत्र हमारे मरिया देख देख जग मैं दऊ चले राख आप मुहे और नंद लै तुम मम कर हो सदा प्रत पारा तुम साहे मैं दास तिहारा जाने अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करहो मोहे हार परा मैं आनंद वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम सह मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संगारो प्रथम धरो भगवत को ध्याना बहुर करो कविता बिदनाना कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो चूक होए कब लिहो सुधारो कब्यो बाच दोहरा जो निज प्रभ मो सो कहा सो कहे हो जग माहे जो ते प्रभ को त्याए हैं अंत सुरग को जाहे दोहरा हर हर जन दुई एक है बिव विचार कश नाही जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे दोहरा जब आयस प्रभ को पयो जन्म धरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सबूं कहत सुनाए कब बाच दोहरा

मधुरा जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ त्यै हैं संत अंत लहंगे मुक्त फल पावहंगे भगवंत दोहरा काल पुरख की देह मोह कोटक बिसन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सास करोर जलेस दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भगत नेत सुरग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुनै अर गावै दुख पाव तह निकट न आवै बिसन भगत की ए फल होई आद ब्याद छवै सकै न कोई संबत सत्रह सहस बचावन हाड़वदी प्रथम सुख दावन तवे प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लहो लिहो सुधारा दोहरा नेत्र तोंगे चरण तार सतद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण की ओ रघुबर कथा प्रसंग दोहरा साध साध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूर्ण की ओ भगवत कृपा प्रसाद सवैया।

तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म बसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग की तोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे दर्श पयोई।

पावड़ी। तिथ तू समरथ जिथ कोई नाहे, उथ तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन के जम के दूत ना तेरा छड़ जाहे, पौजल बिखमस गाहो गुरसबदी पार पाहे। जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मह एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे, बिरथा कोई ना जाए जे आवै तुद आहे। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ, निद्री सतगुर पेखना सरवणी सुरना गुर नाओ। सतगुर सेती रत्या दरगह पाइया ठाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनो एह वथ दे। जग मह उत्तम काढ़ी है विरले कई के महला पंजवा। रखे रखण हार आप्यो बारियन, गुर की पैरी पाए काज सवारियन। हुआ आप दयाल मनहो ना विसारियन, साध जना कै संग भव जल तारियन। साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन, तिस साहिब की टेक नानक मने माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे, तिस साहिब की टेक नानक मने माहे। जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सत्संग जी, आप बड़भागे हो, सतगुरां ने सुभागा समां बख्शिश कीता है। संध्या वेले सोदा रहरा साहिब जी दे जाप सरवण कीते हन। आओ हुण इलाही रब्बी गुरबाणी दे शब्द कीर्तन सरवण करिए। शब्द कीर्तन सरवण करा रहे हैं हजूरी जागी भाई बलविंदर सिंह जी। उन्हां दा समुचा जथा संगतां नूं इलाही रब्बी गुरबाणी दे कीर्तन द्वारा निहाल करेगा। उपरंत भाई निशान सिंह जी अकाल तख्त साहब वाले, उन्हां दा ढाडी जथा 7 बजे तो लैके 8 बजे तक संगतां नूं ढाडी वारां दे नाल निहाल करेगा। आओ सारे सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरां दी इलाही रब्बी गुरबाणी दा आनंद माणिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

छुट्टी नाल बोलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: हे गुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सोरठ महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारी, चौकी चौगिर्द हमारी। राम नाम मन लागा, जम ले जाई कर भागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करी मन निर्मल। पूर्ण पुरख विधाता रहाउ, नानक प्रभ अविनाशी। ता की सेव न बिरथी जासी, आनंद करहे तेरे दासा। जप पूर्ण होई आसा, बिलावल महला पंजवा। ताती बाव न लग गई, पार ब्रह्म शरण आई। चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया, जिन बणत बनाई। राम नाम औख दिया, हे काले बलाई रहाओ। राख लिए तन रखन हार, सब व्याध मिटाई। कहो नानक कृपा पई, प्रभ भय सहाई। श्लोक जय साधु गोविंद भजन। कीर्तन नानक नीत, ना होना तू नह छुट है। निकट न जाई हो दूत, श्लोक महला पंजवा। मन मह चितवो चितवनी, उदम करो उठ नीत। हर कीर्तन का आहरो, हर देहो नानक के मीत। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीर्त आखी है। करते कहो विचारो, तित कर गावो सोहिला। सिवरियो सिरजन हारो, तुम गावो मेरे निरभाओ का सोहिला। हों बारी जित सोहिला, सदा सुख होई रहाओ। नित नित जीड़े समालियन, देख है गदे बनहार। तेरे दान कीमत ना पवै, तिस दाते कवन सुमार। संबत सहा लिखिया, मिलकर पावो तेल। देहो सजण असी चिड़ियाँ, जो होवै साहिब स्यों मेल। घर कर इहो पहुँचा, सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिया, नानक से धे आवन। राग आसा महला पहला। छे घर छे गुर, छे उपदेश। गुर गुर एको बेस अनेक। बाबा जय घर करते कीर्त होई। सो कर राख बढ़ाई तोई रहाओ। विश्व चसिया घड़ियां पहरा, थिती वारी महो होआ। सूरज को रुत अनेक, नानक करते के केते बेस। राग तनासरी महला पहला। गगन में थाल रब चंद दीपक, बने तार का मंडल जनक मोती। धूप मल्यान लो पवन चबरो करी, सगल बनराई फूलंत ज्योति। कैसी आरती होई, भाव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द बाजंत भेरी रहाओ। सहस तब नैन नन नैन है तोही काओ। सहस मूरत नना एक तोही। सहस पद विमल नन एक पद गंध विन। सहस तब गंध ए विचलत मोही। सम है ज्योत ज्योत है सोए, तिसदा चानण सम है चानण होए। गुरसाखी ज्योत प्रगट होए, ज्योत इस भावै सुआरती होए। हर चरण कबल मकरंद लोभित, मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग को, होए जाते तेरा नाई वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा ही। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिब मंडल मंडा ही। कर साधु अंजलि पुन बड़ा ही, कर डंडौत पुन बड़ा ही रहाओ। साकत हर रसाद न जानिया, तिन अंतर हों मैं कंडा ही। ज्यों ज्यों चलहै चुभै दुख पावै, जम काल सहै सिर डंडा ही। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण भव खंडाही। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाही। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख बड़ बड़ा ही। जन नानक नाम आधार टेक है, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੀ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ਈਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਅੱਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈਣਾ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੀ ਰਹਾਓ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਹੈ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ ਹੋ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜ ਹੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹਿ ਬਸੀਰਾ ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਹੋਰ ਨਾ ਹੋਈ ਗੋਫੀਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਉਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ।

0: मेरे
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: थोड़ा जिहा ला के वेखो फिर इत्थे ला के वेखो इको वेखो ठीक है इस तरह।

0: एक ठीक है,
1: एक को फिर एक को दे थोड़ा जा मात्र बजा, थोड़ा मोटा थोड़ा जा बजा।
2: वाहिगुरु
1: मोटी तो हुई है भाई, थोड़ा जो शार्प जी हुई हुई कर
3: वाहे वाहे
2: वाहे वाहे वाहे वाहे वाहिगुरु वाहे वाहे वाहे वाहे।

जन्म मरण दुख जाए, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ, सोरठ महला नौवां। जो नर दुख में दुख नहीं बाने, सुख स्नेह अर्पै नहीं जाके,

लोभ मोह अभिमाना हरख सोग ते रह न्यारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्यागै जग ते रह निरासा काम क्रोध जेह परसै नाहन तेह घट ब्रह्मन वासा।

गोविंद स्यो ज्यो पानी संग पानी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला नौवां जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्नेह अर्पै नहीं जाकै कंचन माटी मन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपो सतनाम सतनाम सत

पूत संतोखा रखया जनसूत जे को बुझ हुए सचार तवल उपर किता पार धरती होर परै होर होर तिस्ते भार तरै कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखया बुड़ी कलाम।

सूतम की तपसाओ एक कवाओ तिस्ते हुए लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुह भख सार असंख मोहन लवलाए तार कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया न जावै इक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध कूर असंख चोर हराम खूर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ यार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर करह पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर भार हुए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग खाण जिन ये लिखे ते सिर नाहे जे फुरमाए तिव तिव पाहे

एक बार जो दुद पावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार। भरिया हाथ पैर तन देह पानी धोता उतर सोखे मूद पलीती कपड़ होए दे साबून लिया हो धोए तो भरिया मत पापा कै संग ओह धोपै तो नावै कै रंग। पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बी जापे ही खाहो नानक हुक्मी आव हो जाहो। तीर्थ ताप दया दत्त दान जे को पावै तिलका मान। सुनया मनया मन कीता पहाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत ना होए। स्वस्ताद बाणी ब्रह्माओ सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सुरुति महु कवन जित हुआ कारण।

थित वार ना जोगी जाने रुत माहु ना कोई जा करता सिरठी कौ साजे आपे जाने सोई किव कर आखा किव सलाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब डी नाई कीता जा का होवै।

जुग जुग एक वेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश सै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक वेश एक दूजी बहु लख होए लख होवह लख वीस लख लगेड़ा आखी है एक नाम जगदीश ए त्राहे पद पवड़िया चढ़िया हुई कीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर न मंगण देन न जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राज माल मनसूर

नीच न कोय। राति रुति थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल तिसवे धरती थाव रखी धर्मशाल तिस विच जीय जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होय विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवा नदरी करम पवै निशान कज पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाय। धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का अखो करम केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाट घड़ी है रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते न चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुधनाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मुन केते केते रत्न समुंदन

गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाग पातशाही दसवें छपै छंद त्व प्रसाद। चक्कर चिहन अर वर्ण जात अर पाद नहन जेह, रूप रंगर रेख भीख को कह न सकत केह। अचल मूरतन भाव प्रकाश अमतोज कहिजै, कोड इंद्र इंद्राण शाहे शाहान गणिजै। त्रिपवन महेश्वर नार असुर निहित, नेत बन दृढ़ कहत। त्वे सर्वनाम कथा कवन करम नाम वर्णत सुमत, पुजंग प्रयाद छंद। नमस्तुं अकाले, नमस्तुं कृपाले, नमस्तुं अरूपे, नमस्तुं अनूपे, नमस्तुं अपेखे, नमस्तुं अलेखे, नमस्तुं अकाये, नमस्तुं अजाये, नमस्तुं अगंजे, नमस्तुं अपंजे, नमस्तुं अनामे, नमस्तुं अठामे, नमस्तुं अकर्मंग, नमस्तुं अतर्मंग, नमस्तुं अनामंग, नमस्तुं अतामंग, नमस्तुं अजीते, नमस्तुं अपीते, नमस्तुं अबाहे, नमस्तुं अटाहे, नमस्तुं अनीले, नमस्तुं अनादे, नमस्तुं अशेदे, नमस्तुं अगादे, नमस्तुं अगंजे, नमस्तुं अपंजे, नमस्तुं उदारे, नमस्तुं अपारे, नमस्तुं सोए कै, नमस्तुं अने कै, नमस्तुं अपूते, नमस्तुं अजूपे, नमस्तुं नरकर्मे, नमस्तुं नरपरमे, नमस्तुं नरदेशे, नमस्तुं नरपेशे, नमस्तुं नरनामे, नमस्तुं नरकामे, नमस्तुं नरताते, नमस्तुं नरगाते, नमस्तुं नरतूते, नमस्तुं अपूते, नमस्तुं अलोके, नमस्तुं अशोके, नमस्तुं नरतापे, नमस्तुं अथापे, नमस्तुं धर्माने, नमस्तुं निदाने, नमस्तुं अगाहे, नमस्तुं अबाहे, नमस्तुं दुर्वर्गे, नमस्तुं असर्गे, नमस्तुं परपोगे, नमस्तुं सोजोगे, नमस्तुं अरंगे, नमस्तुं अपंगे, नमस्तुं अगम्ये, नमस्तस्तरम्ये, नमस्तुं जलाश्रे, नमस्तुं नराश्रे, नमस्तुं अजाते, नमस्तुं अपाते, नमस्तुं अभजवे, नमस्तस्त अजवे, अदेशं अदेशे, नमस्तुं अपेशे, नमस्तुं नरतांभे, नमस्तुं नरबाहमे, नमो सर्वकाले, नमो सर्वदयाले, नमो सर्वरूपे, नमो सर्वभूपे, नमो सर्वखापे, नमो सर्वथापे, नमो सर्वकाले, नमो सर्वपाले, नमस्तस्तदेवै, नमस्तुं अपेवै, नमस्तुं अजन्मे, नमस्तुं सुबानमे, नमो सर्वगौने, नमो सर्वपावने, नमो सर्वरंगे, नमो सर्वपंगे, नमो कालकाले, नमस्तस्तदयाले, नमस्तुं अभरणे, नमस्तुं अमरणे, नमस्तुं जारारं, नमस्तुं कर्तारं, नमो सर्वतन्दे, नमोस्तयबन्दे, नमस्तुं नरसाके, नमस्तुं नरबाके, नमस्तुं रहीमे, नमस्तुं करीमे, नमस्तुं अनन्ते, नमस्तुं महन्ते, नमस्तस्तरागे, नमस्तुं सोहागे, नमो सर्वसोखं, नमो सर्वपोखं, नमो सर्वकर्ता, नमो सर्वहर्ता, नमो जोग जोगे, नमो भोग भोगे, नमो सर्वदयाले, नमो सर्वपाले, चाचरी छांदो त्व प्रसाद। अरूप है, अनूप है, अजू है, अपू है, अलेख है, अपेख है, अनाम है, अकाम है, अते हैं, अपे हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, त्रिमान हैं, निधान हैं, त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, अनील हैं, अनाद हैं, अजय हैं, आजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अपूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपांज हैं, अचूज हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंध हैं, बंद हैं, नरबूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अल्लाह है, अजह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, नृसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगह है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है, पुजंग प्रयाद छंद। नमो सर्वमान्ये समस्त निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेहवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपावणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो दान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्त स्वरूपे परभंगी परमाथे समस्ति विभूते, कलंक बिना नेकलंकी स्वरूपे, नमो राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणे, नमो अस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेखीय परमीय भोगीय भुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते,

नमो रोग रोगे नमस्त इशनानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंतर जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंदो सर्वं परनाशी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धधा बुद्धधा वृद्धकर्ता अदो उर्ध अर्धंग अघंग ओघर्ता परम परम परमेश्वर प्रोषपालंग सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग अशेदीय पेदीयनाम अकामंग समस्तु पराधि समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयाद छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्त नदाने नमस्तु नरनाथे नमस्तु ब्रह्माथे नमस्तु अगंजे नमस्तु अपंजे नमस्तु अकाले नमस्तु अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजे नमो साजे नमो शाहे नमो माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृशंग नमो सर्वकृशंग नमो सर्वरंगे त्रिपंगीयानंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजय खिजय अभिजय समस्तंग परसिजय कृपालुं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृद सिद्धंग निवासी चर्पण छांदो त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्म अलख कर्म सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राण सर्वं त्राण सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले

पाद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जत्र तत्र विराज्य ही अवतूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आत पुरुष उदार मूर्त अजौन आद अशेख देश और ना पे जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विशा हो फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेख तताम हूँ नह जाए सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तता एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेला खेल खेलन अंत को फिर एक दे पिव न जान ही जय वेद और कते रूप रंग न जात पात सो जान ही कह जेवता बात न जात जाकर जन्म मरण भी ही न चक्कर बकर फिर चत्र चक मान ही पुरतीन लोग चौदह हैं के बिखै जग जापई जय जाव आ देवनाद मूरत थापयो सबै जय थाप परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरुष अपार सर्व विश्व रचियो स्वयं पव गण भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरुष आदेश धर्म धाम सो परम रहत भूत लख अपीस अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आव रूप मेघ आन उस्तत एक पुरुष अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूपा सूत अंगहीना भंग अनादम एक पुरुष अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपीख सर्वशास्त्र न जान ही जय रूप रंग अरेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न वही वह चेत मद पार छंद प्रस

अलहंकारम अनुपूतं अपहपंगत मितयपार गुण घनोदार मुन घन प्रणाम निरपह निकाम अद्वत प्रचंड मित गत अखंड अलस्य कर्म दृश्य धर्म सर्व प्रनड्ड।

कामे पुजांग प्रियादिशांदम चतुर्चक्र कर्ता चतुर्चक्र हर्ता चतुर्चक्र दाने चतुर्चक्र जाने चतुर्चक्र वर्ती चतुर्चक्र भरती चतुर्चक्र पाले चतुर्चक्र काले चतुर्चक्र पासे चतुर्चक्र वासे चतुर्चक्र माने चतुर्चक्र दाने चाचरी छंद न सत्रह न मित्रह न परमंग न पित्रह न कर्मंग न काहे अजन्मंग अजाये न चित्रह न वित्रह प्रे हैं पवित्र पृथिस दिश अदृश अकृश भगवती छंदो त्व प्रसाद कथते के अशय दिश के अभिज भिष के अगन करम के अपंज भरम के अभिज लोक के अदित शोक के अवतूत वर्ण के विभूत कर्ण के राजंग प्रभा है धर्मंग तुजा है के अशोक वर्ण के सर्व अपर्ण के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभाव अनूप है के आद अदेव है के अब अपेव है चित्रंग विहीन है के एक अधीन है कि रोजी रजा कर ही मेरे हा कह के पाक बे ऐब हैंगे गैबुल गैब हैंगे अफवुल गुनाह हैं के शाह हान शाह है के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहंद हैं के राज रहीम हैं के कर्मंग करीम हैं के सर्वंग करी हैं के सर्वंग दरी हैं के सर्वत्र माने हैं के सर्वत्र दाने हैं के सर्वत्र गौन हैं के सर्वत्र पावन हैं के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वम करीम है के परम फहीम है के आकलाम है के साहिब कलाम है के हुसन वजू है तुम्हारा रजू है मेसु सलाम है सलेख तुम दाम है गनीम शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिरंदर मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रजू निदान है रीफुल अजीम है रजाय यकीन है अनेक उतरंग है भेद है अपांग है अजूजन विवाज है गरीमुल खराज है निरुक्त स्वरूप है धर्मगत विभूत है परभुक्त प्रभा है स्वयुग सदा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है गाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाथ स्वरूप है नंगे अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभंग त्रिभाद्य गंजे अगाध्य सुभंग सर्वभाग्य सुसर्व अनुराग त्रिभुग स्वरूप है छिज है शूत है नरकंग प्रणास है पृथ्वी प्रवास है नुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है नृक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अन उक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपीख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है अनास है उदास है तंद है अबंध है अभगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अदिख है अलेख है अपेख है अटाह है अगह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है आजाद है चरपड़ छंदो त्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसावल छंद उत्व प्रसाद नमो नरकनाशे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगंग विभूते प्रमादं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगास रूपे निर्बाद विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे नृभंगी सरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात नृसागंधरी कह मित्तो अमीघ है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांदो त्व प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं मेसु सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चराग हैं के कामन करीम है राजक रहीम है के रोजी देहंद हैं के राज क्रहिंद है गरीमुल कुमार हैं के हुसन जमाल हैं गरीमुल खराज हैं गरीबुल निवास हैं रीफुल सिकान हैं रासुल फिकान हैं कलंकंग प्रणास है समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम है रजाय ग्रहीम है समस्तुल जुबा हैं के साहिब करा हैं के नरगुण प्रणास हैं भैसुल निवास हैं के सर्वुल गमन हैं बेसुल गमन हैं तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज हैं परम परम ईस है समस्तुल अदीस हैं देसुल अलेख हैं बेसुल अपेख हैं जिमिनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल

कारण है, सर्व उबारण है, त्रित के तरण है, जग के करण है, मन मान्या है, जग जान्या है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्व पास्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, संपर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, परते पर है, करुणा कर है, अजपा जप है, थपा थप है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अमृता मृत है, करुणा कृत है, कृता कृत है, तरणी त्रित है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अजबा कृत है, अमृता मृत है, नरनायक है, खलकायक है, विषम पर है, करुणालय है, नृपनायक है, सर्वपायक है, पावपंजन है, अर्गंजन है, रिवतापन है, जब जापन है, अकृंकृत है, सर्वकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्व आत्म है, आत्म बस है, जासके जास है, पूजांग प्रयात शांद, नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो ते तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो रासंग तामसंग सांद रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो योग योगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो पूज पूजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो सांद रूपे, नमो इंद्र इंद्रियानादिंग विभूते, कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आस्य, नमो बांग बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामिद्र भंगी त्रकाले, अनंगी अकामे, एक अक्षरी छंद, अजह अलह अभय अभय अपू अजू अनाश अकाश अगंज अपंज अलख अपाख,

गंजे अलेखे हैं पूजंग प्रयाद छंद है। नमस्तुल प्रणाम समस्तुल प्रणाश्य गंजुल अनाम समस्तुल निवास इंद्र कामंग बपूते समस्तुल स्वरूपे कुल कर्मंग प्रणाशी सुधर्मंग बपूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणाशी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब बपूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करिमुल रही में चतर जगरवर्ती चतर जगर भुगते स्वयं भव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकारंग प्रणाशी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग बपूते दुकारंग प्रणाशी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग बपूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवें त्व प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिद्धांत के देख फिर कर जुग जति के सुसुराधन सुध सुधाधक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मात को न देखे प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूं ते एक रत्ति बिन एक रत्ति के मात मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप भली विद न्यावत शीसन जात विचारे एते भय तो कहाँ भय भूपत अंत कौ नंगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब दे दिशान को बाज ढूल मृदंग नंगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसद ही है राज हजारे भूत भवेख भवान के भूपत कौन गन नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भले बिन अंत को अंत के धाम सुधारे तीर्थ नान दयादम दान सुसंजम नेम अनेक विशेख है वेद पुराण कतेव कुरान जमीन जवान सबान के पेख है पौन हार जती जत तार सब सब चार हजार के देख है श्री भगवान भजे बिन भूपद एक रत्ति बिन एक न लेख है शुद्ध सिपा दुरंत दुबाह सुसाज सुना दुर्जान दलैंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलैंगे तोर रीन मरूर मवासन मत मतंगन मान मलैंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलाएंगे वीर अपार बढ़े बरियार विचार हसार के तार पछैया तोरत देश मलिंदम वासन मादिक जान गान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बात नहीं चग चार लवैया साहेब श्री सब को शरणायक जाच गन एक सु एक दवैया दानव देव निंदन साचर भूत भविख भवान जपैंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल मैं सब थाप थपैंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के बहु पुंज खपैंगे सा

हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रण को पलम बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछाना घट घट के पट पट की जाना जावद करख रा करता रा प्रजा धरत तब देह पारा जावा करख करत हो कब हूँ तुम मैं मृत देह धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आप अपनी बूझ उचार तुम सभी ते रहत नरालम जानत वेद भेद अर आलम।

पहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदाशिव निरंकार का चीनत नह भेव आप अपने बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा कहे विद सजा प्रथम संसारा।

कहूँ सिबट भयो शंकर इकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाय अचम भाव आज आज रूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस्तु तब शरणी परे तन के दुष्ट दुखत हुवै मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तन के तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह आए हैं रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट रह तत्काल कृपा दृष्ट तन जाय निहर हो ताके ताव तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें सुंभारा काल फास देता है उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी अब हाथ दालेहु उबारी सर्व ठौर मोह हो सहाय दुष्ट दुख ते लेहु बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलबिक सगल देह को हरता दुष्ट दुखियन को छय करता श्री अस्तु जप हे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछित फल पावे सोई दुख नाथ सह बेआपत कोई अड़ेल सुनै गुंग जो यहे सुरसन पावई सुनै मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भाव निकट ना तिन नरके रहै

बहुत नाहीं बोलना। खन्य हो तिखी वाल हो निकी ईद मार्ग जाना गुरप्रसादी जिनी आप तजया हर वासना सो माहणी कह नानक चाल भगतां जुगहो जुग निराली। ज्यो तू चला है तिव चल है स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चला है तिव चल है जिना मार्ग पाव है कर कृपा जिन नाम लाए है से हर हर सदा ते आवे है जिसनु कथा सुनाए है अपनी से गुरुद्वारा सुख पाव है कह नानक सच्चे साहिब ज्यो भावै तिवै चलावहे इहो सोहिला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया इहो तन कै मन वसिया जिन तुरहूं लिखिया आया एक फिरे कन्हेरे करे गला गली किनैना पाया कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया पवित होए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों पवित संगत सब आईया कहन दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया करमी सहज ना उपजै विण सहजे सह सा ना जाहे नह जाए सह सा कितै संयम रहे करम कमाए सह सह जीव मलीन है कित संयम धोता जाए मन धोव हो शब्द लाग हो हर सिंह रहो हो चित लाए कह नानक गुरप्रसादी सहज उपजै एह सहसा इव जाए जियो हो मैड़े बहर हो निर्मल बहर।

दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाई हो वै सिफत खसाम दी नूर अरसों कुरसों चढ़ी है तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सजन सच्चा पातशाह सिर साहां दे साहो जिस पास बैठियां सोही है।